0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने ख्रिस्तियों से कहा है कि वे अपनी प्रेरिताई को ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत मुलाकात एवं चिंतन पर आधारित करें और उनके साथ गहरे संबंध द्वारा शक्ति प्राप्त कर आशा, प्रेम एवं लगन के साथ हर परिस्थिति में सुसमाचार का साक्ष्य दें। पोप लियो 14वें ने रविवार 22 जून को वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
0: आज की धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में यीशु शिष्यों को मिशन में भेजते हैं, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें यह सलाह देते हैं।
1: Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce.
0: मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। पोप ने कहा,
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio,
0: या उन बातों के बीच एक समानता दिखाता है जो हम कान से सुनते हैं, यानी हमारे दिल के राज में क्या है और जिन्हें हम सबको बताने के लिए बुलाए गए हैं।
1: Ricordandoci che l'annuncio del Vangelo,
0: और हमें याद दिलाता है कि सुसमाचार की घोषणा के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है प्रभु से एक व्यक्तिगत मुलाकात करना, जो हम में से हर एक के लिए जरूरी है। असल में प्रेरिताई के कार्य के लिए शक्ति सिर्फ तकनीकी एवं उपकरणों से बढ़कर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कार्य और हमारे जवाब की सच्चाई पर आधारित है। संत थॉमस एक्विनस प्रवचन को दूसरों तक वैसे ही पहुंचाने की सलाह देते हैं जैसे हमने चिंतन किया है। अतः संत पापा ने सभी ख्रिस्तों को चिंतन करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना एक खास अनुभव है जो कुछ संतों या मठवासियों और साधुओं के लिए ही है। हम सभी इसे कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन की भाग दौड़ के बीच शांत पल बचाने की कोशिश करते हुए, जिसमें हम ईश्वर के सामने मौन रह सकें, उनकी आवाज सुन सकें, अपनी खुशियां एवं परेशानियां उनसे साझा कर सकें और उनके साथ अपने जीवन का अवलोकन कर सकें, यह हमें और अधिक मजबूत एवं जागरूक विश्वास वाला व्यक्ति बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भरोसेमंद एवं स्वतंत्र पुरुष और महिला प्रेरित बनते हैं, जो जीवन के हर माहौल और परिस्थिति में सुसमाचार की रोशनी दिखा सकें और जहां इसकी कीमत समझी या मानी नहीं जाती, वहां भी इसकी गवाही दे सकें। सुसमाचार लेखक संत मत्ती जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उन समुदायों के लिए समय आसान नहीं था। उन्हें दुश्मनी और जुल्म का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज की दुनिया के कई हिस्सों में अनेक ख्रिस्त झेलते हैं। उनके लिए निराश होने और थकान या डर के आगे झुकने का प्रलोभन बहुत अधिक है। संत पापा ने कहा, अब पहले की तरह यीशु की शिक्षाओं पर वफादार रहना और उनके वचन का प्रचार करना मुश्किल है। नफरत का जवाब प्यार से देना, घमंड का जवाब विनम्रता से और निराशा का जवाब हिम्मत से देना, यही कारण है कि हमें अपने विश्वास और अपने मिशन को उनके साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ना चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम हार ना माने और हर किसी को हर हालत में उम्मीद, प्यार और शांति का संदेश दे सकें, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। अतः संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: कुंवारी मरियम हमें हरेक की बुलाहट के अनुसार प्रभु यीशु के मिशनरी शिष्य होने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पाप ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने विश्व शरणार्थ दिवस की याद कर कहा,
1: Ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato.
0: कल विश्व शरणार्थ दिवस मनाया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ावा दिया है। इस दिवस को शरणार्थियों की स्थिति से जुड़े सम्मेलन की 75वीं सालगिरह पर मनाया गया जिससे उन लोगों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें प्रताड़ित किया और अपना देश घर और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। पोप ने कहा,
1: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale
0: मुझे उम्मीद है कि जिस भावना ने इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बनाने की प्रेरणा दी वह आज भी देश के नेताओं की अंतरात्मा को रोशन करती रहे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सुरक्षा एवं बचाव चाहते हैं, उनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।
1: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
0: मैं सभी से यह भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जुल्म के शिकार हैं, उनका स्वागत किया जाए ताकि वे शांति और सम्मान से रह सकें और भविष्य की ओर उम्मीद से देख सकें। उसके बाद संत पापा ने कार्तिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
0: मैं कैथोलिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करते हुए विश्वास करती है और प्रार्थना के नियम विश्वास के नियम के सिद्धांत पर एक साथ चिंतन करना आजकल खास रूप से जरूरी है। तत्पश्चात पोप ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: मैं आप सभी रोम के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का स्नेह से अभिवादन करता हूँ। और अंत में संत पापा ने दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 22 जून को रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के कार्यकारी बोर्ड को संबोधित किया। संत पापा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सालाना मीटिंग में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु मिसेस सिंडी मिकेन को धन्यवाद दिया। साथ ही एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कार्ल स्काउ और इस जरूरी मीटिंग के अध्यक्ष मिसेस कार्ला बारोसो, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और इस मीटिंग में आए खास मेहमानों और संस्था के स्टाफ को अभिवादन किया, जो आपातकाल में जान बचाने और लड़ाई झगड़ों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच खाने की मदद देने के लिए समर्पित हैं। संत पापा ने कहा, आज संकट अलग अलग घटनाओं से बढ़कर लगातार बनी रहने वाली सच्चाई बन गई है, जिनकी पहचान लंबे समय तक चलने वाले झगड़े, खाने की लगातार कमी, आर्थिक उतार चढ़ाव और बढ़ते जलवायु की कमजोरियों से होती है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, ग्लोबल सिस्टम का कौन सा ढांचा ऐसी स्थितियों को पैदा करने, दोबारा पैदा करने और कभी कभी इसे नॉर्मल बनाने में काबिल है। अब बात सिर्फ दखल देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने तक फैली हुई है कि सिस्टम लगातार वही समस्याएं क्यों पैदा करता है जिन्हें ठीक करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बिखरता जा रहा है, जिसका एक कारण बहुपक्षीय व्यवस्था का संकट है। जैसा कि उन्होंने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया, सभी लोगों के लिए एक सामान्य भविष्य और सामान्य भलाई को कंसेप्ट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए संस्थान कमजोर होते दिख रहे हैं। नतीजन देशों ने इन मुद्दों और मल्टीलेटरल सहयोग के बीच गहरे लिंक को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिसोर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और घरेलू स्थिरता पर तेजी से लगाया है। संत पापा ने कहा कि जो दांव पर लगा है वह न सिर्फ किसी एजेंसी का असर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की विश्वसनीयता भी है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि एक नया रास्ता मुमकिन है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, इसके लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है उसे आसान बनाने और जो जरूरी है उसे प्राथमिकता देने और यह पक्का करने का इरादा होना चाहिए कि किसी भी इंसान को भुलाया ना जाए। अंत में संत पापा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों को ईश्वर आशीर्वाद दे, ताकि सभी को अपनी रोजी रोटी मिल सके और वे इज्जत से जी सकें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून के जन्म की 100वीं सालगिरह पर उनके फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की, जिसका नाम उनके नाम पर है और जो उनका काम को जारी रखे हुए हैं। अपने भाषण में संत पापा ने आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून को मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर, सबसे कमजोर लोगों के लिए समर्पित एक डॉक्टर और जीवन के बिना थके रक्षक के रूप में याद किया। उन्होंने फाउंडेशन के सदस्यों से उनके उदाहरण को अपनाने और समाज में समर्पित गवाह बनने, आम भलाई के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून, जिन्होंने ट्राइसोमी 21 के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोमल असमानता की खोज की, मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें आज के जेनेटिक्स के पिताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपना जीवन खोज और बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। संत पापा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मेडिसिन वह कहना पसंद करते थे, बीमारी से नफरत और बीमार व्यक्ति के लिए प्यार है। संत पापा ने कहा कि इसी विश्वास ने लेज्यून को उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें वे प्यार से गरीबों में से गरीब कहते थे। संत पापा ने कहा, प्रोफेसर लेज्यून की एकेडमिक उत्कृष्टता और कलीसिया के लिए बिना थके सेवा को देखते हुए संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें पोंटिफिकल अकादमी ऑफ साइंस का सदस्य नियुक्त किया था।
संत पापा ने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन की संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ गहरी दोस्ती और जीवन की रक्षा के लिए उनके साझा प्रतिबद्धता ने जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन ने अकादमी को जीवन के खिलाफ बढ़ते खतरों के सामने एक जरूरी संस्था के रूप में देखा। विज्ञान और ज्ञान के व्यक्ति के रूप में जेरोम लेजियोन को जल्द ही एहसास हो गया था कि उनकी वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल जन्म से पहले ट्राइसोमी 21 वाले लोगों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसी कारण से संत पापा ने कहा कि वह उनके वकील बनने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने हिपोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन और इस नए यूजेनिक्स की निंदा की, जिसे उन्होंने क्रोसोमल नस्लवाद कहा। प्रोफेसर लेजियोन के भविष्य बताने वाले शब्दों ने उन्हें हर इंसान की जिंदगी की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, जो उस अटूट सम्मान पर आधारित है जिसकी शुरुआत ईश्वर के क्रिएटिव काम से हुई है। उधर यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की 96वीं आम सभा 24 जून को प्राग चेकिया में शुरू होने वाली है, जिसमें 56 देशों के 113 पब्लिक रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे, जिसमें EBU के संस्थापक सदस्यों में से एक वाटिकन रेडियो भी शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में यूरोप का मीडिया परिदृश्य कैसे बदलेगा? बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता पर कैसे असर डालेंगे? संचार के लिए बढ़ते डिजिटल तरीके और क्वालिटी न्यूज को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच सही संतुलन क्या है, तथा यूरोपियन नेता और नागरिक सोच समझ कर फैसले ले सकें? ये यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की आने वाली आम सभा के कुछ खास मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक सेवा मीडिया की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इस पोंटिफिकल ब्रॉडकास्टर को संचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और EBU रेडियो और ऑडियो न्यूज ग्रुप के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोटी प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने ख्रिस्तियों से कहा है कि वे अपनी प्रेरिताई को ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत मुलाकात एवं चिंतन पर आधारित करें और उनके साथ गहरे संबंध द्वारा शक्ति प्राप्त कर आशा, प्रेम एवं लगन के साथ हर परिस्थिति में सुसमाचार का साक्ष्य दें। पोप लियो 14वें ने रविवार 22 जून को वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Il Vangelo della liturgia odierna Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
0: आज के धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में यीशु शिष्यों को मिशन में भेजते हैं। अन्य बातों के साथ साथ उन्हें यह सलाह देते हैं।
1: Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce.
0: मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम

0: पापा ने सभी क्रिश्चियनों को चिंतन करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
1: non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना एक खास अनुभव है जो कुछ संतों या मठवासियों और साधुओं के लिए ही है। हम सभी इसे कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन की भाग दौड़ के बीच शांत पल बचाने की कोशिश करते हुए, जिसमें हम ईश्वर के सामने मौन रह सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, अपनी खुशियां एवं परेशानियां उनसे साझा कर सकें और उनके साथ अपने जीवन का अवलोकन कर सकें, यह हमें और अधिक मजबूत एवं जागरूक विश्वास वाला व्यक्ति बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम भरोसेमंद एवं स्वतंत्र पुरुष और महिला प्रेरित बनते हैं, जो जीवन के हर माहौल और परिस्थिति में सुसमाचार की रोशनी दिखा सकें और जहां इसकी कीमत समझी या मानी नहीं जाती वहां भी इसकी गवाही दे सकें। सुसमाचार लेखक संत मती जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उन समुदायों के लिए समय आसान नहीं था। उन्हें दुश्मनी और जुल्म का सामना करना पड़ा, जैसा कि आज की दुनिया के कई हिस्सों में अनेक क्रिश्चियन झेलते हैं। उनके लिए निराश होने और थकान या डर के आगे झुकने का प्रलोभन बहुत अधिक है। संत पापा ने कहा, अब पहले की तरह यीशु की शिक्षाओं पर वफादार रहना और उनके वचन का प्रचार करना मुश्किल है। नफरत का जवाब प्यार से देना, घमंड का जवाब विनम्रता से और निराशा का जवाब हिम्मत से देना, यही कारण है कि हमें अपने विश्वास और अपने मिशन को उनके साथ एक गहरे रिश्ते में जोड़ना चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम हार ना माने और हर किसी को हर हालत में उम्मीद, प्यार और शांति का संदेश दे सकें, क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। अतः संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: कुंवारी मरियम हमें हरेक की बुलाहट के अनुसार प्रभु येसु के मिशनरी शिष्य होने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने विश्व शरणार्थ दिवस की याद कर कहा,
1: Ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato.
0: कल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ावा दिया है। इस दिवस को शरणार्थियों की स्थिति से जुड़े सम्मेलन की 75वीं सालगिरह पर मनाया गया, जिससे उन लोगों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें प्रताड़ित किया और अपना देश, घर और परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। पोप ने कहा,
1: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale.
0: मुझे उम्मीद है कि जिस भावना ने इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बनाने की प्रेरणा दी, वह आज भी देश के नेताओं की अंतरात्मा को रोशन करती रहे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सुरक्षा एवं बचाव चाहते हैं, उनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।
1: Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.
0: मैं सभी से यह भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जुल्म के शिकार हैं, उनका स्वागत किया जाए, ताकि वे शांति और सम्मान से रह सकें और भविष्य की ओर उम्मीद से देख सकें। उसके बाद संत पापा ने कार्तिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
0: मैं कैथोलिक पेंटेकोस्टल इंटरनेशनल डायलॉग के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करते हुए विश्वास करती है और प्रार्थना के नियम विश्वास के नियम के सिद्धांत पर एक साथ चिंतन करना आजकल खास रूप से जरूरी है। तत्पश्चात पोप ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: मैं आप सभी रोम के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से

0: आए तीर्थयात्रियों का स्नेह से अभिवादन करता हूँ। और अंत में संत पावन ने दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti auguro una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 22 जून को रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय का दौरा किया और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के कार्यकारी बोर्ड को संबोधित किया। संत पापा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सालाना मीटिंग में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु मिसेस सिंडी मिकेन को धन्यवाद दिया। साथ ही एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कार्ल स्काउ और इस जरूरी मीटिंग के अध्यक्ष मिसेस कार्ला बारोसो, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और इस मीटिंग में आए खास मेहमानों और संस्था के स्टाफ को अभिवादन किया, जो आपातकाल में जान बचाने और लड़ाई झगड़ों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच खाने की मदद देने के लिए समर्पित हैं। संत पापा ने कहा, आज संकट अलग अलग घटनाओं से बढ़कर लगातार बनी रहने वाली सच्चाई बन गई है, जिनकी पहचान लंबे समय तक चलने वाले झगड़े, खाने की लगातार कमी, आर्थिक उतार चढ़ाव और बढ़ते जलवायु की कमजोरियों से होती है। इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, ग्लोबल सिस्टम का कौन सा ढांचा ऐसी स्थितियों को पैदा करने, दोबारा पैदा करने और कभी कभी इसे नॉर्मल बनाने में काबिल है। अब बात सिर्फ दखल देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने तक फैली हुई है कि सिस्टम लगातार वही समस्याएं क्यों पैदा करता है जिन्हें ठीक करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बिखरता जा रहा है, जिसका एक कारण बहुपक्षीय व्यवस्था का संकट है। जैसा कि उन्होंने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में बताया, सभी लोगों के लिए एक सामान्य भविष्य और सामान्य भलाई को कंसेप्ट को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए संस्थान कमजोर होते दिख रहे हैं। नतीजन देशों ने इन मुद्दों और मल्टीलेटरल सहयोग के बीच गहरे लिंक को नज़रअंदाज करते हुए अपने रिसोर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और घरेलू स्थिरता पर तेजी से लगाया है। संत पापा ने कहा कि जो दांव पर लगा है वह न सिर्फ किसी एजेंसी का असर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की विश्वसनीयता भी है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि एक नया रास्ता मुमकिन है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा, इसके लिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है उसे आसान बनाने और जो जरूरी है उसे प्राथमिकता देने और यह पक्का करने का इरादा होना चाहिए कि किसी भी इंसान को भुलाया ना जाए। अंत में संत पापा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों को ईश्वर आशीर्वाद दे, ताकि सभी को अपनी रोजी रोटी मिल सके और वे इज्जत से जी सकें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून के जन्म की 100वीं सालगिरह पर उनके फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की, जिसका नाम उनके नाम पर है और जो उनका काम को जारी रखे हुए हैं। अपने भाषण में संत पापा ने आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून को मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर, सबसे कमजोर लोगों के लिए समर्पित एक डॉक्टर और जीवन के बिना थके रक्षक के रूप में याद किया। उन्होंने फाउंडेशन के सदस्यों से उनके उदाहरण को अपनाने और समाज में समर्पित गवाह बनने, आम भलाई के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। आदरणीय प्रोफेसर जेरोम लेज्यून, जिन्होंने ट्राइसोमी 21 के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोमल असमानता की खोज की, मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें आज के जेनेटिक्स के पिताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपना जीवन खोज और बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। संत पापा ने उन्हें याद करते हुए कहा, मेडिसिन वह कहना पसंद करते थे, बीमारी से नफरत और बीमार व्यक्ति के लिए प्यार है। संत पापा ने कहा कि इसी विश्वास ने लेज्यून को उन लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिन्हें वे प्यार से गरीबों में से गरीब कहते थे। संत पापा ने कहा, प्रोफेसर लेज्यून की एकेडमिक उत्कृष्टता और कलीसिया के लिए बिना थके सेवा को देखते हुए संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें पोंटिफिकल अकादमी ऑफ साइंस का सदस्य नियुक्त किया था।
संत पापा ने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन की संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ गहरी दोस्ती और जीवन की रक्षा के लिए उनके साझा प्रतिबद्धता ने जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लेजियोन ने अकादमी को जीवन के खिलाफ बढ़ते खतरों के सामने एक जरूरी संस्था के रूप में देखा। विज्ञान और ज्ञान के व्यक्ति के रूप में जेरोम लेजियोन को जल्द ही एहसास हो गया था कि उनकी वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल जन्म से पहले ट्राइसोमी 21 वाले लोगों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसी कारण से संत पापा ने कहा कि वह उनके वकील बनने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने हिपोक्रेटिक शपथ का उल्लंघन और इस नए यूजेनिक्स की निंदा की, जिसे उन्होंने क्रोसोमल नस्लवाद कहा। प्रोफेसर लेजियोन के भविष्य बताने वाले शब्दों ने उन्हें हर इंसान की जिंदगी की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, जो उस अटूट सम्मान पर आधारित है जिसकी शुरुआत ईश्वर के क्रिएटिव काम से हुई है। उधर यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की 96वीं आम सभा 24 जून को प्राग चेकिया में शुरू होने वाली है, जिसमें 56 देशों के 113 पब्लिक रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे, जिसमें EBU के संस्थापक सदस्यों में से एक वाटिकन रेडियो भी शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में यूरोप का मीडिया परिदृश्य कैसे बदलेगा? बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता पर कैसे असर डालेंगे? संचार के लिए बढ़ते डिजिटल तरीके और क्वालिटी न्यूज को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच सही संतुलन क्या है, तथा यूरोपियन नेता और नागरिक सोच समझ कर फैसले ले सकें? ये यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU की आने वाली आम सभा के कुछ खास मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक सेवा मीडिया की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इस पोंटिफिकल ब्रॉडकास्टर को संचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और EBU रेडियो और ऑडियो न्यूज ग्रुप के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोटी प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: अवरुद्ध होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसकी शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंत में कहा, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलिसिया की धर्म शिक्षा के सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में मददगार सिद्ध होता है। श्रोताओं, विशेष प्रेरिताई कार्य और संसाधनों के अलावे ख्रिस्ती समुदाय को हम और भी अलग स्थानों में प्रशिक्षण स्थलों के रूप में पाते हैं, जैसे कि विद्यालयों में, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों में, इसके साथ ही उन स्थानों में जहां लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है, और इसके अलावे खेल की दुनिया, संगीत और कला के क्षेत्र में। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद जो बहुधा अलग अलग अभ्यासों और परंपराएं तय करते हैं, कैथोलिक प्रेरणा से प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र तेजी से खुद को एक ऐसे कलिसिया की अग्रिम पंक्ति में लाते हैं जो हमेशा प्रेरिताई की ओर आगे बढ़ती है। सिनोडालिटी के अभ्यासों से प्रेरित वे मित्रतापूर्ण और सहभागिता के संबंधों में एक उर्वरक संदर्भ बन सकते हैं। वे ऐसे माहौल बन जाते हैं जो जिंदगी के साक्षी बनते हैं। उनमें हुनर और संगठन उससे भी बढ़कर आम लोगों के हाथ में होते हैं, जिसमें परिवारों के योगदान को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से कैथोलिक विद्यालय और महाविद्यालय विश्वास और संस्कृति के मध्य वार्ता हेतु अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते और मूल्यों के संदर्भ में नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे ख्रिस्त के संग संबंध स्थापित करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन की पूर्णता की एक निशानी है। इस भांति वे उन मुख्य शैलियों के विकल्प को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं जो अक्सर व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा से चलते हैं, और इस तरह वे एक नबुवत भूमिका भी निभाते हैं। कुछ परिस्थितियों में वे सिर्फ वे स्थल होते हैं जहां बच्चे और युवा कलिसिया के संपर्क में आते हैं, जब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता से प्रेरणा मिलती है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को दूसरे धार्मिक परंपराओं के लोग भी मानवीय विकास के तौर पर अहमियत देते हैं। श्रोताओं, बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक साझा सिनोडल प्रशिक्षण एक क्षितिज का निर्माण करता है जिसके तहत एक विशेष प्रशिक्षण की समझ और उसका अभ्यास व्यक्तिगत रूप में प्रेरिताई और बुलाहट की मांग करती है। ऐसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम विभिन्न बुलाहटों के माध्यम उसे उपहारों के आदान प्रदान, सेवा के दृष्टिकोण से और अलग अलग उत्तरदायित्व में सहभागी होने हेतु शिक्षा देने के तरीके स्वरूप देखें। इसकी मांग जो हमारे लिए सिनोडल प्रक्रिया में निकल कर आई बहुधा हमसे मानसिकता में परिवर्तन की मांग करती है। एक नवीनता जो प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में नवीनता की मांग करती है। इससे भी बढ़कर हम इसमें आंतरिक रूप में एक तत्परता को पाते हैं जो अपने को विश्वास में भाई बहनों से मिलन द्वारा समृद्ध करता है, जो पूर्व ग्रहों और विखंडित विचारों पर विजय हासिल करना है। प्रशिक्षण का सार्वभौमिक आयाम हमारी मानसिकता में बदलाव लाने को मदद करता है। श्रोताओं, इन सारी प्रक्रियाओं में हम एक विस्तृत मांग को पाते हैं कि अभिषिक्त व्यक्ति के लिए प्रेरिताई की नियुक्ति आत्म परख और प्रशिक्षण की मांग करती है जो एक सिनोडल रूप में हो। इसमें नारियों की एक विशेष सहभागिता हो, समुदायों के दैनिक जीवन में एक पूर्ण सहभागिता और प्रशिक्षण को चाहिए कि वह कलिसिया के हर जन के संग सहयोग के साथ साथ कलिसिया में आत्म मंथन की प्रक्रिया को पोषित करे। यह हमें साहसपूर्वक प्रशिक्षकों को तैयार करने में अपनी शक्ति विनय करने को सम्माहित करता है। धर्म सभा हमसे इस बात की मांग करती है कि हम पुरोहित संस्था की मौलिक प्रणाली के संबंध में विचार करें जिससे हम धर्म सभा की मांग के अनुरूप अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। हमें एक निश्चित दिशा निर्देशिका को परिभाषित करने की जरूरत है जिससे हम सिनोडालिटी का सही प्रशिक्षण दे सकें। प्रशिक्षण की प्रक्रिया उम्मीदवारों में प्रेरिताई हेतु एक जुनून उत्पन्न करें। धर्माध्यक्षकों का प्रशिक्षण भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जिससे वे अपनी प्रेरिताई का निष्पादन भली भांति करें, पवित्र आत्मा में एकता के उपहारों को स्थापित करें और अपने अधिकारों का उपयोग एक सिनोडल रूप में कर सकें। सिनोडल रूप में प्रशिक्षण अपने में इस बात को सम्माहित करती है कि एकता का आयाम अभिषिक्त प्रेरिताई के सभी रूपों में उपस्थित हो। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया ने सिनोडालिटी के संबंध में ईश प्रजा के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। इसमें सर्वप्रथम हम डिजिटल वातावरण में सीखने की प्रक्रिया के प्रभाव को पाते हैं। ध्यान केंद्रित करना, विश्व और स्वयं के बारे में सचेतना और एक दूसरे के संग संबंधों को स्थापित करना। डिजिटल संस्कृति को हम वर्तमान सांस्कृतिक परिवेश में और उभरते हुए प्रेरिताई के क्षेत्र में कलिसिया की गवाही का एक अहम हिस्सा स्वरूप पाते हैं। इसके लिए यह पक्का करना जरूरी है कि ख्रिस्तीय संदेश ऑनलाइन भरोसेमंद तरीके से मौजूद हों, उसकी विषय वस्तु को आदर्श के हिसाब से विकृत ना किया जाए। हालांकि डिजिटल मीडिया में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन यह किसी पर धौंस जमाने, गलत जानकारी, यौन शोषण और लत के जरिए नुकसान और चोट भी पहुंचा सकता है। कलिसिया के शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वे बच्चों और बड़ों को वेबसाइट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विचारपूर्ण और सुरक्षित बातों की जानकारी प्रदान करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने वैटिकन में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित ग्रीष्म शिविर के प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए उन्हें तकनीकी उपकरणों का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करने की सलाह दी। पोप लियो ने सोमवार को वैटिकन के स्तातेरागात से अर्थात ग्रीष्म के बच्चे समर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कहा, तकनीकी बहुत अच्छी और कई चीजों के लिए बहुत काम की हो सकती है, हालांकि जब हम साथ होते हैं तो हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या टैबलेट होना जरूरी नहीं है। पोप ने बच्चों को तकनीकी उपकरणों के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ समय बिताने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, दोस्ती बनाना, एक साथ समय बिताना, एक साथ खेलना और शायद एक साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। हम मानव हैं, एक व्यक्ति हैं और हमें दूसरों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। आगे पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, जब परिवार एक साथ होता है तो फोन पर व्यस्त रहते हुए एक साथ बैठना काफी नहीं होता। बात करना, वार्तालाप करना और एक दूसरे के साथ आनंद लेने सीखना बहुत जरूरी है। पोप ने प्रार्थना के महत्व पर भी जोर दिया और बच्चों को याद दिलाया कि भले ही हमारे फोन पर बाइबल और प्रार्थनाएं हों, ईश्वर हमारे फोन देखना नहीं चाहते। ईश्वर हमारे दिल एवं हमारा जीवन देखना चाहते हैं। खासकर बड़े बच्चों से बात करते हुए पोप ने चेतावनी दी कि कई एप्लीकेशंस जानबूझकर यूजर्स को लंबे समय तक एंगेज रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा, वे हमें इस तकनीकी पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्क्रीन के इस्तेमाल पर व्यवहारिक सीमा तय करने का सुझाव दिया, जैसे दिन के कुछ खास समय में फोन को दूर रखना और बातचीत एवं पारिवारिक गतिविधि के लिए जगह बनाना। पोप ने बच्चों को रिश्ते बनाकर, प्रार्थना में ईश्वर की खोज कर और ऐसी निर्भरता से बचकर जो उनकी स्वतंत्रता को कम कर सकती है, अपनी मानवीय एवं आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का प्रोत्साहन दिया। एक दूसरे युवा प्रतिभागी ने पोप से उनकी यात्राओं के अनुभव पूछे। अपनी यात्राओं के बारे बताते हुए पोप ने कई ऐसे मौकों को याद किया जब GPS नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें गलत दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, इटली में, दूसरे यूरोपीय देशों में, पेरू में और एक बार तो अमेरिका में भी मैंने GPS को फॉलो किया और यह मुझे गलत रास्ते पर ले गया। पोप ने समझाया कि अपने लिए सोचने, सीखना और यह जानने की महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करना कि हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं काफ़ी बेहतर है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे पूरी तरह तकनीकी पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर की दी हुई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मुझे अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि तैयारी और अच्छा फैसला लोगों को मुश्किलों से निपटने और अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। मुलाकात के अंत में पोप ने बच्चों को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अपने माता पिता को यह बताने का प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने पोप के साथ मिलकर प्रार्थना की। पोप लियो चौथवें 26 और 27 जून को कार्डिनल मंडल के साथ एक असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग लेंगे, जो कलीसिया और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होगी, जहां शांति की खोज और सिनोडालिटी को लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कलीसिया के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के ठीक पहले 26 और 27 जून के लिए निर्धारित कार्डिनलों की असाधारण सभा के लिए कार्यक्रम जारी किया। पोप लियो चौथवें जब कार्डिनलों से मिलेंगे तो वे दुनिया को प्रभावित करने वाले संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलीसिया को शांति एवं मेल मिलाप लाने की भाषा एवं दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे संवाद करना चाहिए। जनवरी में हुई बैठक जिसमें दुनिया भर से 170 कार्डिनल निर्वाचक और

निर्वाचक कार्डिनल एक साथ आए थे। उसके बाद यह पोप लियो 14वें की दूसरी कंसिस्ट्री सभा होगी। उस कंसिस्ट्री के अंत में पोप ने जून की सभा की घोषणा की थी और कार्डिनलों से कहा था कि मुझे आप पर भरोसा रखने की जरूरत महसूस होती है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य सिनोडल तरीके से होगा, जिसमें प्रार्थना, मौन, व्यक्तिगत चिंतन, दलों में बातचीत और एक साथ सभा के सत्र शामिल होंगे। कार्डिनलों से कहा गया है कि वे हॉल में होने वाली बातों को गोपनीय रखें और कंसिस्ट्री के दौरान प्रेस को कोई बयान ना दें, ताकि भाईचारे का माहौल बना रहे। भाग लेने वालों को 20 दलों में विभक्त किया जाएगा। 9 दलों में चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे जो ऑर्डिनरी हैं। उनमें प्रेरितिक राजदूत और ऐसे कार्डिनल भाग लेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी के रूप में अपनी सेवा पूरी की है। बाकी 11 दलों में रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल और चुनाव में भाग नहीं लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे। हर दल में एक अध्यक्ष होगा जो चर्चा को संचालित करेगा और समय का ध्यान रखेगा। 18 नवंबर 1920 को यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बना जिसने आगरा पर गर्भपात को वैध कर दिया। जॉनस्टन के पुराले के अनुसार सोवियत राज के 70 सालों में 260 मिलियन से ज्यादा गर्भपात किए गए। इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर वैध एवं आसान बनाने से समाज में एक तथाकथित गर्भपात संस्कृति को बढ़ावा मिला। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इरीना माल्टसेवा बताती हैं, सोवियत काल में गर्भपात को एक रूटीन प्रक्रिया माना जाता था। इसका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ा, जिससे मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, भावनात्मक अलगाव और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है। इसलिए उनका मानना है कि आज सोवियत के बाद भी दुनिया में लगभग हर इंसान पर सीधे या किसी और तरह से गर्भपात के बाद होने वाले आघात के नतीजों का असर पड़ता है। 1990 के दशक के अंत में रूस में गर्भपात के नतीजों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होने लगी। हालांकि यह बातचीत ज्यादातर धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दायरे तक ही सीमित थी। लगभग 2 दशक बाद पहला कानूनी कदम सामने आया। उदाहरण के लिए 2011 में एक मौन का सप्ताह शुरू किया गया, जो गर्भपात से पहले एक आवश्यक इंतजार का समय होता था, जिसका मकसद महिलाओं को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देना। पोप लियो 14वें के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय के दौरे पर दक्षिण सूडान में काम कर चुकी WFP की अधिकारी जेमा स्नोडन का कहना है कि यह दौरा UN के मानवीय काम करने वालों के मिशन के लिए प्रोत्साहन देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़ाई और जलवायु संकट से प्रभावित दूर दराज के इलाकों में सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज के भाग 5, जिसका शीर्षक है अतः मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसकी शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंत में कहा, प्रशिक्षण के कार्य प्रणाली जिसके द्वारा सिनोडालिटी के नए उत्साह को लाभ प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि हम धर्म शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही दीक्षांत की यात्रा में धर्म शिक्षा सदैव प्रेरिताई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराती है। प्रेरिताई हेतु शिष्यों के समुदाय को इस बात का ज्ञान है कि करुणा की निशानी और हर व्यक्ति के जीवन के अनुभवों के आधार पर धर्म शिक्षा का अनुपालन कैसे किया जा सकता है। कलिसिया की धर्म शिक्षा के सार को खोए बिना इसे अस्तित्वगत परिधि तक कैसे ले जाया जाता है। इस भांति यह हमारे समय के नर और नारियों के लिए एक वार्ता का प्रयोगशाला बनता और उन्हें जीवन के अर्थ को खोजने में मददगार सिद्ध होता है। श्रोताओं, विशेष प्रेरिताई कार्य और संसाधनों के अलावे ख्रिस्ती समुदाय को हम और भी अलग स्थानों में प्रशिक्षण स्थलों के रूप में पाते हैं, जैसे कि विद्यालयों में, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों, महाविद्यालयों में, इसके साथ ही उन स्थानों में जहां लोगों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है, और इसके अलावे खेल की दुनिया, संगीत और कला के क्षेत्र में। सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद जो बहुधा अलग अलग अभ्यासों और परंपराएं तय करते हैं, कैथोलिक प्रेरणा से प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र तेजी से खुद को एक ऐसे कलिसिया की अग्रिम पंक्ति में लाते हैं जो हमेशा प्रेरिताई की ओर आगे बढ़ती है। सिनोडालिटी के अभ्यासों से प्रेरित वे मित्रतापूर्ण और सहभागिता के संबंधों में एक उर्वरक संदर्भ बन सकते हैं। वे ऐसे माहौल बन जाते हैं जो जिंदगी के साक्षी बनते हैं। उनमें हुनर और संगठन उससे भी बढ़कर आम लोगों के हाथ में होते हैं, जिसमें परिवारों के योगदान को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से कैथोलिक विद्यालय और महाविद्यालय विश्वास और संस्कृति के मध्य वार्ता हेतु अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते और मूल्यों के संदर्भ में नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे ख्रिस्त के संग संबंध स्थापित करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन की पूर्णता की एक निशानी है। इस भांति वे उन मुख्य शैलियों के विकल्प को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं जो अक्सर व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा से चलते हैं, और इस तरह वे एक नबुवत भूमिका भी निभाते हैं। कुछ परिस्थितियों में वे सिर्फ वे स्थल होते हैं जहां बच्चे और युवा कलिसिया के संपर्क में आते हैं, जब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता से प्रेरणा मिलती है तो उनकी पढ़ाई लिखाई को दूसरे धार्मिक परंपराओं के लोग भी मानवीय विकास के तौर पर अहमियत देते हैं। श्रोताओं, बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक साझा सिनोडल प्रशिक्षण एक क्षितिज का निर्माण करता है जिसके तहत एक विशेष प्रशिक्षण की समझ और उसका अभ्यास व्यक्तिगत रूप में प्रेरिताई और बुलाहट की मांग करती है। ऐसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम विभिन्न बुलाहटों के माध्यम उसे उपहारों के आदान प्रदान, सेवा के दृष्टिकोण से और अलग अलग उत्तरदायित्व में सहभागी होने हेतु शिक्षा देने के तरीके स्वरूप देखें। इसकी मांग जो हमारे लिए सिनोडल प्रक्रिया में निकल कर आई बहुधा हमसे मानसिकता में परिवर्तन की मांग करती है। एक नवीनता जो प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में नवीनता की मांग करती है। इससे भी बढ़कर हम इसमें आंतरिक रूप में एक तत्परता को पाते हैं जो अपने को विश्वास में भाई बहनों से मिलन द्वारा समृद्ध करता है, जो पूर्व ग्रहों और विखंडित विचारों पर विजय हासिल करना है। प्रशिक्षण का सार्वभौमिक आयाम हमारी मानसिकता में बदलाव लाने को मदद करता है। श्रोताओं, इन सारी प्रक्रियाओं में हम एक विस्तृत मांग को पाते हैं कि अभिषिक्त व्यक्ति के लिए प्रेरिताई की नियुक्ति आत्मपरख और प्रशिक्षण की मांग करती है जो एक सिनोडल रूप में हो। इसमें नारियों की एक विशेष सहभागिता हो, समुदायों के दैनिक जीवन में एक पूर्ण सहभागिता और प्रशिक्षण को चाहिए कि वह कलिसिया के हर जन के संग सहयोग के साथ साथ कलिसिया में आत्म मंथन की प्रक्रिया को पोषित करे। यह हमें साहसपूर्वक प्रशिक्षकों को तैयार करने में अपनी शक्ति विनय करने को सम्माहित करता है। धर्म सभा हमसे इस बात की मांग करती है कि हम पुरोहित संस्था की मौलिक प्रणाली के संबंध में विचार करें जिससे हम धर्म सभा की मांग के अनुरूप अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। हमें एक निश्चित दिशा निर्देशिका को परिभाषित करने की जरूरत है जिससे हम सिनोडालिटी का सही प्रशिक्षण दे सकें। प्रशिक्षण की प्रक्रिया उम्मीदवारों में प्रेरिताई हेतु एक जुनून उत्पन्न करें। धर्माध्यक्षकों का प्रशिक्षण भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जिससे वे अपनी प्रेरिताई का निष्पादन भली भांति करें, पवित्र आत्मा में एकता के उपहारों को स्थापित करें और अपने अधिकारों का उपयोग एक सिनोडल रूप में कर सकें। सिनोडल रूप में प्रशिक्षण अपने में इस बात को सम्माहित करती है कि एकता का आयाम अभिषिक्त प्रेरिताई के सभी रूपों में उपस्थित हो। श्रोताओं, धर्म सभा की प्रक्रिया ने सिनोडालिटी के संबंध में ईश प्रजा के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। इसमें सर्वप्रथम हम डिजिटल वातावरण में सीखने की प्रक्रिया के प्रभाव को पाते हैं। ध्यान केंद्रित करना, विश्व और स्वयं के बारे में सचेतना और एक दूसरे के संग संबंधों को स्थापित करना। डिजिटल संस्कृति को हम वर्तमान सांस्कृतिक परिवेश में और उभरते हुए प्रेरिताई के क्षेत्र में कलिसिया की गवाही का एक अहम हिस्सा स्वरूप पाते हैं। इसके लिए यह पक्का करना जरूरी है कि ख्रिस्तीय संदेश ऑनलाइन भरोसेमंद तरीके से मौजूद हों, उसकी विषय वस्तु को आदर्श के हिसाब से विकृत ना किया जाए। हालांकि डिजिटल मीडिया में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन यह किसी पर धौंस जमाने, गलत जानकारी, यौन शोषण और लत के जरिए नुकसान और चोट भी पहुंचा सकता है। कलिसिया के शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वे बच्चों और बड़ों को वेबसाइट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विचारपूर्ण और सुरक्षित बातों की जानकारी प्रदान करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा एक सिनोडल कलिसिया एकता सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर अपनी एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने वैटिकन में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित ग्रीष्म शिविर के प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए उन्हें तकनीकी उपकरणों का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करने की सलाह दी। पोप लियो ने सोमवार को वैटिकन के स्तातेरागात से अर्थात ग्रीष्म के बच्चे समर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कहा, तकनीकी बहुत अच्छी और कई चीज़ों के लिए बहुत काम की हो सकती है, हालांकि जब हम साथ होते हैं तो हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या टैबलेट होना ज़रूरी नहीं है। पोप ने बच्चों को तकनीकी उपकरणों के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ समय बिताने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा, दोस्ती बनाना, एक साथ समय बिताना, एक साथ खेलना और शायद एक साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। हम मानव हैं, एक व्यक्ति हैं और हमें दूसरों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। आगे पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, जब परिवार एक साथ होता है तो फोन पर व्यस्त रहते हुए एक साथ बैठना काफी नहीं होता। बात करना, वार्तालाप करना और एक दूसरे के साथ आनंद लेने सीखना बहुत जरूरी है। पोप ने प्रार्थना के महत्व पर भी जोर दिया और बच्चों को याद दिलाया कि भले ही हमारे फोन पर बाइबल और प्रार्थनाएं हों, ईश्वर हमारे फोन देखना नहीं चाहते। ईश्वर हमारे दिल एवं हमारा जीवन देखना चाहते हैं। खासकर बड़े बच्चों से बात करते हुए पोप ने चेतावनी दी कि कई एप्लीकेशंस जानबूझकर यूजर्स को लंबे समय तक एंगेज रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा, वे हमें इस तकनीकी पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने स्क्रीन के इस्तेमाल पर व्यवहारिक सीमा तय करने का सुझाव दिया, जैसे दिन के कुछ खास समय में फोन को दूर रखना और बातचीत एवं पारिवारिक गतिविधि के लिए जगह बनाना। पोप ने बच्चों को रिश्ते बनाकर, प्रार्थना में ईश्वर की खोज कर और ऐसी निर्भरता से बचकर जो उनकी स्वतंत्रता को कम कर सकती है, अपनी मानवीय एवं आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का प्रोत्साहन दिया। एक दूसरे युवा प्रतिभागी ने पोप से उनकी यात्राओं के अनुभव पूछे। अपनी यात्राओं के बारे बताते हुए पोप ने कई ऐसे मौकों को याद किया जब GPS नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें गलत दिशा दिखाई। उन्होंने कहा, इटली में, दूसरे यूरोपीय देशों में, पेरू में और एक बार तो अमेरिका में भी मैंने GPS को फॉलो किया और यह मुझे गलत रास्ते पर ले गया। पोप ने समझाया कि अपने लिए सोचने, सीखना और यह जानने की महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करना कि हम जीवन में कहाँ जा रहे हैं काफ़ी बेहतर है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे पूरी तरह तकनीकी पर निर्भर रहने के बजाय ईश्वर की दी हुई क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मुझे अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि तैयारी और अच्छा फैसला लोगों को मुश्किलों से निपटने और अचानक आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। मुलाकात के अंत में पोप ने बच्चों को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अपने माता पिता को यह बताने का प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने पोप के साथ मिलकर प्रार्थना की। पोप लियो चौदहवें 26 और 27 जून को कार्डिनल मंडल के साथ एक असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग लेंगे, जो कलीसिया और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होगी, जहां शांति की खोज और सिनोडालिटी को लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कलीसिया के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के ठीक पहले 26 और 27 जून के लिए निर्धारित कार्डिनलों की असाधारण सभा के लिए कार्यक्रम जारी किया। पोप लियो चौदहवें जब कार्डिनलों से मिलेंगे तो वे दुनिया को प्रभावित करने वाले संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलीसिया को शांति एवं मेल मिलाप लाने की भाषा एवं दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे संवाद करना चाहिए। जनवरी में हुई बैठक जिसमें दुनिया भर से 170 कार्डिनल निर्वाचक और गैर निर्वाचक कार्डिनल एक साथ आए थे, उसके बाद यह पोप लियो चौदहवें की दूसरी कंसिस्ट्री सभा होगी। उस कंसिस्ट्री के अंत में पोप ने जून की सभा की घोषणा की थी और कार्डिनलों से कहा था कि मुझे आप पर भरोसा रखने की जरूरत महसूस होती है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य सिनोडल तरीके से होगा, जिसमें प्रार्थना, मौन, व्यक्तिगत चिंतन, दलों में बातचीत और एक साथ सभा के सत्र शामिल होंगे।
कार्डिनलों से कहा गया है कि वे हॉल में होने वाली बातों को गोपनीय रखें और कंसिस्ट्री के दौरान प्रेस को कोई बयान ना दें ताकि भाईचारे का माहौल बना रहे। भाग लेने वालों को 20 दलों में विभक्त किया जाएगा। 9 दलों में चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे जो ऑर्डिनरी हैं। उनमें प्रेरितिक राजदूत और ऐसे कार्डिनल भाग लेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी के रूप में अपनी सेवा पूरी की है। बाकी 11 दलों में रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय के चुनाव में भाग लेने वाले कार्डिनल और चुनाव में भाग नहीं लेने वाले कार्डिनल शामिल होंगे। हर दल में एक अध्यक्ष होगा जो चर्चा को संचालित करेगा और समय का ध्यान रखेगा। 18 नवंबर 1920 को यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बना जिसने आगरा पर गर्भपात को वैध कर दिया। जॉनस्टन के पुरालेख के अनुसार सोवियत राज के 70 सालों में 260 मिलियन से ज्यादा गर्भपात किए गए। इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर वैध एवं आसान बनाने से समाज में एक तथाकथित गर्भपात संस्कृति को बढ़ावा मिला। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ इरीना माल्टसेवा बताती हैं, सोवियत काल में गर्भपात को एक रूटीन प्रक्रिया माना जाता था। इसका पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ा जिससे मनोवैज्ञानिक दिक्कतें, भावनात्मक अलगाव और यहाँ तक कि हिंसा भी होती है। इसलिए उनका मानना है कि आज सोवियत के बाद भी दुनिया में लगभग हर इंसान पर सीधे या किसी और तरह से गर्भपात के बाद होने वाले आघात के नतीजों का असर पड़ता है। 1990 के दशक के अंत में रूस में गर्भपात के नतीजों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होने लगी। हालांकि यह बातचीत ज्यादातर धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दायरे तक ही सीमित थी। लगभग 2 दशक बाद पहला कानूनी कदम सामने आया। उदाहरण के लिए 2011 में एक मौन का सप्ताह शुरू किया गया जो गर्भपात से पहले एक आवश्यक इंतजार का समय होता था जिसका मकसद महिलाओं को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देना। पोप लियो 14वें के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय के दौरे पर दक्षिणी सूडान में काम कर चुके WFP की अधिकारी जेमा स्नोडन का कहना है कि यह दौरा UN के मानवीय काम करने वालों के मिशन के लिए प्रोत्साहन देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़ाई और जलवायु संकट से प्रभावित दूर दराज के इलाकों में सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।